थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार जे उपेश मर्जन बहिनी नाति थौ नेपाल सम्बत चिन्सा सो पी खुद कौलाथो चतुर्थी मौनी नख या पिनु थौ मौनी छे तया तगु पूजा कोठा गुम दुर्गा या मेघु रूप कुष्मांडा देव या विधि नक्सा पूजा या आगुदो मौनी या पेनु खुनु कुष्मांडा देव या पूजा या मागु

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह दोथी नाप्ल्यागु ज्या जुगुदो बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक गुहाली या नीति बंगाल या खाडी या कुत बिम्स्टेक गृहमन्त्री स्तरीय नापाङ्गु मु ज्या बोती क्यात भारत थेङ्का दिम वेक्ल नौ दिल्ली भारतीय समकक्षी नाप नाप्ना दिगु ख नाप्ल्या ज्या निगुदे या मङ्का सुरक्षा चुता नाप थिति विशेष सहल ब्यागु गृह मन्त्रालय धागु ख वेक थौं नेपा ल्याहा चाहिगु गोसादु। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कजिलिसे पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड रसुवा पोटेको श्री खुसी बाले मधुबिनीको लुम्ती गोसागोगु विशेष पूजा घेवा बोती कैदिगुदो नुवाकोट्या बेत्राउत्री चुङ्गु उत्तर गया धामे मिग बौद्ध परम्परा कथ लामा तेसो पूजा यागुख पूजा बोती कया नाय प्रचण्ड मुडुपिन्त बिचा पुङ्कादिको ख खुसीबा वगु पी गुनु या इले मधुपिनीको आत्मा शान्ति कामना याना विशेष पूजा गोसा गोगु ख खुसीबाल याना छेम्पु मधुपी छेन्चपिन्त वाइसेल नेपाल देखेको अस्थायी आवास ललहात नुवाकट थेङ्कादिमा प्रचण्ड विशेष पूजा बोती कया बिचा हाकादिगु ख। सांसद खगेन्द्र सुनारिया त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सार्निक ज्याजोले बोती मकायात प्रतिबन्ध त गुदो क्षमा मिसाया त धम्की बिगुलिसे ब्ल्याकमेलिङ ए यागु अडियो सार्वजनिक चुतिङका राष्ट्रपा वक्तव्य जारियासे सुनार्या त सार्वजनिक ज्याजोले प्रतिबन्ध त गुख। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम विपद जोखिम न्यूनीकरण या नीति आ या कानुन ओ नीति हिलेमा आधारिगुदो विपद जोखिम न्यूनीकरण या न्याकगो तमुजिया उलेजिया याना दिसे वेक्ल विज्ञपिसँग धाइदिगो खया त दुवालेमा धाइदिल मन्त्री गौतम वैज्ञानिक तथ्य तथ्याङ्क ओ विज्ञ या खया त लिदस या कानुन ओ नीति देखेगु यत्ना दिल। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिसना नेपा या हुलाक सेवा त व्यवस्थित लिचो लागु कथ गुणस्तरीय सेवा रूप क घ्यागु धाइदिगुदो हुलाक सेवा विभाग भिग यहाँको सागोगु ज्याजले वेक्ल हुलाक सेवा या त क्षमता अपेका विकसित यामागु खे ब्यादिगु ख। परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल नाप नेपा या नीति स्विजरल्यान्ड या राजदूत डाक्टर ड्यानियल मेउले शिष्टाचार नक्सन नाप्नादिगुदो मन्त्रालयगु नाप्ला ज्या वेकपी दोथी नेपा ओ स्विजरल्यान्ड या स्वापु बलाकेगु व ग्वाली कालबिल यागु विशेष सल ब्यागु मन्त्रालय थाहागु ख। वङ्गु भदौ 10 गते रसुवा केरुङ लाग्या लाङताङ लिरुङ हिमालय उत्तरी भेगे पिगु सेन्टिमिटर तक जमिन चुइका यङ्कुगु थाहागुदो एकीकृत पर्वतीय विकास या नीति अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसी मोड सार्जिङ यागु नापाङ्गो वैज्ञानिक अध्ययन कथ सन् 2026 जुलाई 27 अगस्त 24 तक या पी च्यानु या इले सेन्टिनेल एक भू उपग्रह पाखे वगु राडर तथ्याङ्क थथे केना बिउगु ख अध्ययन कथ लाङताङ उत्तरी भिर चिन सोङ्गु करोड निगु ला घनमिटर या लो व चपु कुटुना लेन्दे खुसी वङ्गु इसी मोड या महानिर्देशक पेमा ग्याम छु थाइदिगु ख। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भिग निगो अध्यादेश जारी यनादिगुदु राष्ट्रपति पौडेल नेपा या संविधान कथ मन्त्रिपरिषद या सिफारिस वन सम्बन्धी छु नेपाल एन या त भिङ्केको अध्यादेश 2083 हो भूमि सम्बन्धी छु नेपाल एन भिङ्केको नीति या अध्यादेश 2083 जारी यनादिगु राष्ट्रपति या ज्याको थाहागु ख। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वीकृत मापदण्ड अख इन्टरनेट सेवा न्याकुको धासे छिनपिङ्गु इन्टरनेट सेवा प्राध्याज्ञा त नेदोतका दा ब फुइकुगुदो स्वीकृत प्याकेज कथ इन्टरनेट सेवा मबिगु अपो दा कागु प्याकेज कथ सेवा मबिगु धासे थथे ब फुइकुगु प्राधिकरण प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्याल धाइदिगु ख। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग डिलर पाखे ग्यास न्याय त उपभोक्ता त्यो त इनाप यागुदो एलपी ग्यास सहज उपलब्धता सुनिश्चित यागु तातना सोनिङ्गा थिति चिनसुङ्गु थासो ग्यास मिया चो सानो उपभोक्ता त्यो त असुविधा जुगु धासेसँग आ डिलर पाखे ग्यास न्याय त इनाप यागु ख।
चिनिया छगु अदालत म्यानमार या कोकाङ लाग्या ठगी केन्द्र न्याका चोम्पी पुच या सुमिसित मिग मृत्युदण्ड या सजाय न्याङ्का बिगुदु लिपाङ्गु दे म्यानमार नापाउ दक्षिण पूर्वी एसिया अर्बौँ डलर या अनलाइन ठगिया कारोबार बोल्ना चुङ्गुदु थुकी या त दिके त चिन थो लाग या फुक दे नापाउ जाना सुरक्षा कारवाही एना चुङ्गुदु नेपाल त्रिगुणात्मक छगु दिवसीय क्रिकेट खासे ओमनिया त बुका बिगुदु नेपाल ओमनिया त सचिव चिनसङ्गु अन्तर रोन बुका बिगुख थोन्यने नेपाल क्यानाडा यातन बुका बिगुख थौ दे या हिमाली व पहाडी लाग्या पच्चा खसु तोइगु व तराई लाग्या सुचपुची जुइगु धागुदु दे या हिमाली लागना पौ बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लाग्या छगुनीको थासे पच्चा वा नाप च्वापु गाईगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिग ए निहेगु फुटी खुगु डिग्रिया क्वाजो लुगुदु थौ नि न्यागु निसे निहेगु तक क्वाज लुइगु थुकमा यागुदु सोनिगले सुधा न्याता इजुया निन हेगु मिनेटे लुगु सुर्द्य सनिलिया न्याता इजुया पी छगु मिनेटे बी नेपाल भाषे बुख कोचाला शुभ है।

0: यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठिक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। नवरात्र के चारिम दिन दसैं घर आ पूजा कोठली में नौ दुर्गा मध्य के चारिम कुष्मांडा देवी के विधि पूर्वक पूजा आराधना कैल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात दुर्गा पक्ष के चारिम दिन कुष्मांडा देवी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करवाक शास्त्रीय विधि है। आध्यात्मिक अधि भौतिक आ अधि वैदिक दैविक ई तीन ताप के कुष्मा कहल जाते छे। नवदुर्गा मध्य के चारिम देवी कुष्मांडा के शरण में आयल भक्त तीनू ताप हर दे छथि जै कारण से हुनकर नामकरण कैल गेल छन। कुष्मांडा सूरा से भरल घैल तथा खून युक्त पात्र धारण करवला विभिन्न पुराण में उल्लेख रहल अछि। घाट स्थापना कैल गेल स्थान में नौ दुर्गा मध्य के पहिल देवी शैलपुत्री आह्वान के विधि पूर्वक पूजा आराधना कैल गेल। दोसर दिन सोम दिन पूजा स्थल में दोसर ब्रह्मचारिणी देवी के आह्वान क विधि पूजा पूर्वक पूजा आराधना कैल गेल छल। तेसर दिन मंगल दिन चंद्रघंटा देवी के निष्ठा के संग पूजा पाठ कैल गेल छल। बड़ा दशमी के चारिम दिन आय कुष्मांडा देवी के विधि पूर्वक पूजा आराधना कैल जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह कावड़े पलांचौक के पांचखाल नगर पालिका स्थित पलांचौक भगवती के पूजा अर्चना का दर्शन कलने छे। विजयादशमी के चारिम दिन आय प्रधानमंत्री शाह पलांचौक भगवती के दर्शन कने पांचखाल नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष रामकाज श्रेष्ठ के जानकारी दिलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ के हिसाबे प्रधानमंत्री विहिंसर 10 बजे भगवती दर्शन के लिए पहुंचल छले। प्रधानमंत्री शाह के संग में पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल और प्रधानमंत्री शाह के प्रमुख सलाहकार कुमार व्यंजनकार छले थे। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ आई पत्रकार सम्मेलन का अपन 6 महीना के कार्यकाल के 137 बूंदे उपलब्धि सार्वजनिक कलने छे। 6 महीना में नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में दर्ता कैल गेल छे। विद्युत तथा ऊर्जा विकास नीति विद्युत विधेयक आ सिंचाई विधेयक के प्रारंभिक मसौदा तैयार कर सरकार वाला से राय सुझाव लेबाक प्रक्रिया आगू बढ़ायल गेल छे। जल स्रोत संबंधी विधेयक मंत्री परिषद में पेश भेल छे। मंत्री श्रेष्ठ ऊर्जा क्षेत्र के देश के आर्थिक विकास के आधार बनेबाक उद्देश्य के संग विद्युत उत्पादन प्रसारण बाजार विस्तार आ आंतरिक खपत वृद्धि के एकीकृत रूप में आगू बढ़ायल गेल बतौलन। प्राकृतिक विपद के कारण ऊर्जा पूर्वाधार में क्षति पहुंचल बावजूद
1: प्रस्तावित मापदंड में सुखायाम के साँझ में उच्च मांग पूरा कर सकबाक उत्पादन क्षमता सुखा के समय में ऊर्जा के योगदान मासिक उत्पादन के स्थिरता प्रसारण पूर्वाधार के उपलब्धता तथा आयोजना से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करवाक समय धैर्य विद्युत निकासी सुनिश्चित होबाक अवस्था के प्राथमिकता देल जेबाक को जानकारी देलन। सरकार सामुदायिक विद्यालय प्रति विद्यार्थी अभिभावक के बढ़ रहल आकर्षण के थप मजबूत बनेबाक उद्देश्य के संग पूर्वाधार विकास के योजना आगू बढ़ौलक अछि। उत्कृष्ट रिजल्ट हासिल कर 2000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत देशे भर के 109 बड़का सामुदायिक विद्यालय के प्राथमिकता में राखि कर भौतिक पूर्वाधार विस्तार के काज शुरू भेल अछि। शिक्षा क्षेत्र के रूपांतरण के लेल ई एक ऐतिहासिक कदम भेल बतबैत अय के चालू आर्थिक वर्ष में अय विद्यालय के संरचना सुदृढ़ीकरण के लेल 6.54 अरब टका बजट विनियोजन कयल गेल। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल बतौलन। मंत्री पोखरियाल के हिसाबे अयोजना अंतर्गत पहल चरण में 89 विद्यालय के लिए 5.34 अरब टका निकासा भ चुकल अछि। निकासा भेल रकम मार्फत अखन विद्यालय में अत्याधुनिक 12 कोठली 3 तल्ला के भवन निर्माण के काज तीव्र गति में आगू बढ़ायल जात। प्रति विद्यालय लगभग 6 करोड़ टका के लागत में बन वाला ई भवन में आधुनिक कक्षा कोठली व्यवस्थित प्रयोगशाला समृद्ध पुस्तकालय के सेहो व्यवस्था होयत। ऐसा विद्यार्थी के सिखाए वातावरण के आर सुरक्षित व्यवस्थित और प्रभावकारी बनात मंत्री पोखरियाल बतौलन। संगे देश के भव्य निर्माण में अहोरात्र खटे वाला संपूर्ण शिक्षक अभिभावक आ विद्यार्थी के धन्यवाद दैत पोखरियाल सामुदायिक शिक्षा के बदल के सबके सहकार्य आ सबके हाथ में हाथ मिलाकर आगू बढ़ लेल आह्वान कलन। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषद के सन 2027 से लेकर सन 2029 कार्यकाल के लिए सदस्य में निर्वाचित भेल अछि। न्यूयॉर्क स्थित राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मंगल दिन भेल निर्वाचन में नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में खसल 180 मत मध्य 173 मत प्राप्त करते एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समूह से निर्वाचित देश मध्य सबसे अधिक मत हासिल कलक है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए नेपाल के था योगदान निर्वाचन पश्चात वक्तव्य जारी करते नेपाल के विश्वास और समर्थन प्रदान करे वाला संपूर्ण राष्ट्र संघ के सब सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त कलक है। नियोग परिषद के नया कार्यकाल के लिए निर्वाचित अन्य राष्ट्र के सेहो बधाई दिलक है। नेपाल सन 2027 से लेकर 2029 कार्यकाल के लिए निर्वाचित ब्राजील बुरुंडी डोमिनिकन गणतंत्र जर्मनी घाना आयरलैंड जापान जॉर्डन कुवैत मालदोवा नाइजीरिया यूक्रेन उरुग्वे आ जामिबिया के बधाई दिलक है। नियोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदार संघ नजदीक से सहकार्य करित मानव मर्यादा की संरक्षण समावेशिता के प्रवर्धन सामाजिक न्याय आ सबके लिए सम्मान तथा न्यायोचित विकास के आगू बढ़ावा नेपाल प्रतिबद्ध रहल जनौलक है। मलेशिया के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेल के संसदीय सुनवाई प्रक्रिया के निरंतरता दिल जाय संघीय संसद के सुनवाई संघीय संसदीय सुनवाई समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित राजदूत खरेल के विषय में विवादित विषय के संदर्भ में थप अध्ययन करबाक कारणे सुनवाई प्रक्रिया निष्कर्ष लागे के बाकी रहल जानकारी दिलेन। समिति के आजक बैठक में प्रस्तावित राजदूत खरेल संघ स्वार्थ के द्वंद मैन पावर व्यवसाय संघ के संबंध आ पोखरा के जमीन खरीद में अनियमितता लगात विषय में प्रश्न उठायल गेल छल। सभापति श्रेष्ठ विवाद के संदर्भ में थप सूचना आवश्यक भेला से समिति के अध्ययन के लिए समय आवश्यकता भेल बतौलन। राजदूत नियुक्ति संबंधी निर्देशिका में उच्च नैतिक चरित्र भेल हेबाक चाही व्यवस्था भेल चर्च करत ओ समिति अय के अध्ययन तथा रुजू करबाक आवश्यकता रहल बतौलन। थप अध्ययन पश्चात आवश्यक निर्णय कायल जेबाक आ ढिलाई भेला पर सचिवालय मार्फत जानकारी करायल जेबाक सभापति श्रेष्ठ बतौलन। सुनवाई के क्रम में प्रस्तावित राजदूत खरेल स्वयं के विरुद्ध उठायल गेल किछ विषय के संदर्भ में प्रश्न करबाक कोशिश सेहो कयने छलथि। देश भर बीतल 24 घंटा में भेल 15 विपद की घटना में पड़ 10 गोटा व्यक्ति घायल भेल छ। विपद में पड़ घायल भेल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र संबंधित जिला के अस्पताल में उपचार भ रहल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जनौलक है। प्राधिकरण के हिसाबे अय घटना में 26,33,000 बराबरी भौतिक क्षति भेल छ। अय अवधि में देश के विभिन्न स्थान में आग लगी सर्पदंश लगायत की विपद के घटना से भेल छ। प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महत के हिसाबे मोरंग सप्तरी पालपा सुरखेत कालीकोटा कंचनपुर में सर्पदंश की घटना भेल छ। मोरंग धनकुटा महतरी काठमांडू कैलाली आ कंचनपुर में आग लगी की घटना भेल छल। प्राधिकरण के हिसाबे अवधि में भेल विपद की घटना से मानवीय तथा पशु चौपाया में क्षति नहीं भेल बावजूद भौतिक संपत्ति में क्षति पहुंचल छ। नेपाल के संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच राज्य शक्ति के बाँटफाट सह अस्तित्व आ समन्वय के आधारित संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन में जोर दैत अंतर प्रदेश मुख्यमंत्री सम्मेलन सम्पन्न भेल छ। कोशी प्रदेश सरकार द्वारा विराटनगर में आयोजित दू दिने सम्मेलन पश्चात सार्वजनिक कयल गेल सजिया घोषणा पत्र में नेपाल के संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम तीनों तह के सरकार संचालन भ संघीय शासन प्रणाली के थप सुदृढ़ बनेबाक संदर्भ में एक के बद्धता व्यक्त कयल गेल छ। एहि अवसर में कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की देश संघीय शासन प्रणाली के थप सुदृढ़ बनाबक लेल दू दिनक विराटनगर सम्मेलन सफल भेल दावी करत शीघ्र प्रधानमंत्री संग भेंट घाट के समय मिलाकर जारी घोषणा पत्र में समेटल गेल विषय वस्तु पर विचार विमर्श आगू बढ़ायल जेबाक जानकारी दिलेन। सम्मेलन पश्चात मुख्यमंत्री कार्की सब मुख्यमंत्री के उपहार स्वरूप भोजपुरी खुकरी ढाका कपड़ा के कोट आ टोपी तथा लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य गौतम बुद्ध के मूर्ति उपहार स्वरूप प्रदान करने छलथि। सम्मेलन में प्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण थापा मगर गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री आचार्य कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही सहित सब प्रदेश के मुख्य सचिव मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं विज्ञ सब की सहभागिता रहल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी प्रविधि कंपनी गूगल यूरोप के 200 गोटे अनुसंधानकर्ता के अपन सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल तथा वैज्ञानिक उपकरण में पहुंच उपलब्ध करेबाक घोषणा कलक छ। अय पहल से यूरोप में वैज्ञानिक अनुसंधान न प्रवर्तन आ प्राविधिगत प्रतिस्पर्धता के अभिवृद्धि करबाक अपेक्षा कयल गेल छ। डबलिन में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी शिखर सम्मेलन के क्रम में आज जारी विज्ञप्ति में गूगल अनुसंधान टोली के आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता अत्याधुनिक उपकरण प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक अनुसंधान के गति तीव्र बनेबाक उद्देश्य रहल जनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज। राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।